0: चावल छाबिल चोपरेला हूँ कबाल दिखिनली छाबिल का करेरु खुद को सब उत वाल कुबे ना है किम सा इलेक्ट्रा
1: 13 horas con 33 minutos.